आद स्वरूप स्वयं भाव अबरक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण काता जे आस तो जितब सरणी पारे तनके दुष्ट दुख तुहुआ मरे पुरख जाबन पाग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहरि हो ताके ताप ननक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख ते रहा खड़ के तुम्हें सरन तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर बठाओर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता किलबिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तोजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशित फल पावे सोई दुख न तिस व्यापत कोई अड़िल सुने गोंग जो याहे सो रस न पावई सुने मूढ़ चतलाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकटा न तर नर के रह हो जो या कि एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुण तीन कहिज भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखियाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त सब मस्त आफ जून दोहरा दास जान कर दास पार की जय कृपा अपार आप हाथ दे राख मोहे मन क्रम बचन बिचार चाओ पई मैं नागन सहे प्रथम मनाऊ किसन बेसन कब हूं नह त्याऊ कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पाग इन सो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं केंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहें गहे की लाज बिचार अपना जान मुझा प्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देग तेग जग मैं दो चल राख आप मुहे और ना दल तुम मम

होरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चाओ पई जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद छुए सकै न कोई सम्मत सत्रह है सैस पचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल परी लहो ले हो सुधारा दोहरा

एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बह भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो दोहरा।

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया।

मन को मना माहे जस से मरत सुख होए सगले दुख जाहे तेस साहिब की टेक नानक मन माहे जस से मरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दू ठाकुर।

गुरु के कीर्तनिया च गए नहीं, सेवादार ने क्या घर पुत्र नहीं, घर संतान नहीं। भाई वीर सिंह होना लिखे संत गाथा विच, घर संतान नहीं ते गुरु ग्रंथ साहब दे सामने खलो के क्या सच्चे पातशाह तेरी कीर्ति करने वाले नु कादी मुताजी, खीरा खोवेगा खीरा। उदू बाद भाई हीरा सिंह जी का जन्म होया, खीरा खोवेगा खीरा। उन्हों का बिरहा कभी तुसी देखियो, मैं सिर्फ दो कु उदाहरण दे देना। वाहगुरु कृपा करे, क्योंकि बाणी सारे प्रेमा भगती वालियां दी है, सिमरन करन वालियां दी है। ये बाणी वाचक ज्ञानियां दी नहीं जे, ये भांडे मांजन वालियां दी, झाड़ू लाण वालियां दी। ठीक है सी कथा कीर्तन करने आ, जे बाबे दे दर्शन करने ने ना, वो किते भांडे मांजन वाले ते किते जोड़े झाड़न वालियां दे कोल बैठे हुंदे। असलियत है इन्ने प्यार च भिज के। दो सिर्फ एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे देना कि बिरखा ते इस घर की सेवा, उन्हां दी याद तां, क्योंकि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करे। रागी सिंह कीर्तन करते पे ने, बाबा राम कृष्ण जी कीर्तन सुनते पे ने, प्रसंग चल पिया सच्चे सौदे का। चेते रखे ओ बाबे नानक वाले सच्चे सौदे का। ए सच्चा सौदा शब्द भी नहीं वरतना चाहिए, इन ईरखा ना समझियो। जिस बापू के नाते सौदे दियां गल्लां करदे ने लोग, चेते रखे उस पिता जी ने तक नजर भर के देखिया ते नचन वालियां नू ब्रह्म ज्ञान हो गया। इस नजर विचो जिन्हू तकदा उत्थे विषय पैदा हो रहे नहीं। गल चली सच्चे सौदे की, कीर्तन करते हुए कीर्तनी जिवें भाई साहब ने व्याख्या की, कीर्तन करते जदों इत्थे पहुंचे कि बाबा कालू जी ने गुरु नानक साहब दे पवित्र मुख उत्ते अपने हाथ नाल चपेड़ मारी। पर सिखा तू सुन के बाबा कालू जी लई किते अंदर माड़ा फुरना ना बनाई। वो पिता जी ने धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। जदों दो कवरी क्या रागी सिंह ने कीर्तन कर दिया कि देखो चपेड़ मारी बापू जी ने पुत्र दे मुख ते, गुरु नानक साहब दे मुख ते, ते इस तरह निशान पै गए जिवें किते चिट्टे कमल फुल दे उते काले रंग दे भवरे बैठे होण, जिवें लाल मुख कमल फुल दी तरह ते उंगलियां दे निशान काले भवरे। इन्ने शब्द कहे कि चपेड़ वजी, हजूर दियां अखां सिम आईयां। बाबा राम कृष्ण जी बिचो उठ के खड़े हो गए, बाबा कालू जी ना मारो, बाबा कालू जी ना मारो। 20 रुपया की गल है, मैं सारा घर ही सिखा नू कह के सोने नाल मड़ा दिया। हुण तुसी देखो ते समा रह गया कोई, स्थान रह गया कोई नहीं। जड़ा समय स्थान ते जिंदा, पकड़ ते जिंदा, शायद अजे ओ आत्मक मंडल की उडारी नहीं जानता। आत्मक मंडल विच समा स्थान तक दी रहिंदे कि ना मारो शब्द वरते। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब नू इन्ना प्यार के हजूर दे चरना भी जदों रात नू सेवा करनी ते बाबा राम कृष्ण जी होना ने गुरु ग्रंथ साहिब दे पलंग कोल जाके बैठ जाना ते कहना सच्चे पातशाह ये सारी रात किवें निकलेगी। पर सोकत जाने पीर पराई, जा कह अंतर दर्द ना पाई। सच्चे पातशाह सारी रात किवें निकलेगी, किवें तेरे तो बिना मैं रह सकांगा। बैरां विच आके रोई जाना, फिर कहना उठ मना बार बुवे दे बह जा। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विश्राम पै कर दे। महंत तारा सिंह जी का जीवन पढ़िया, जिहड़ियां दो गल्लां सिर्फ मैं सांझियां करनियां ने। ओ शब्द कहे एक तां क्या भांडे मांजे ते दुख जांदा रहा, रोग जांदा रहा। ते दूसरी बात जो गुरमुखां ने लिखी भी महंत जी चले गए फिर दोबारा लिया, ये शब्द लिखे ने। ते एक दिन बाबा जी नूं कहा बाकी सब तो साथी कीर्तन करदे ने, कोई कथा करदा है, कोई गुणी कोई ज्ञानी, मैं तो भांडे मांजना वा।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

दुई कुदरत साजिया करा सिंध ठोचाओ दाता करता आप तू तुस विकरे पसाओ तू जानोई सबसे दिल ऐसे जिंद कवाओ करा सिंध ठोचाओ करा सिंध ठोचाओ।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होय। तू करता करना मैं नाही जाहूं करी न होय। बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखिया राओ। जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला भरपूर रहे जा। तू सच्चा साहिब सिर्फ सवाल जिन की।

पूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर हो प्रवान मलेस ना ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना।

0: शब्द तरूप। You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब।

जान माने परताख गुरु निसतारे जैसे दीप दीपक पतंग लोट पोट होत कब हुक ज्वारा में परत जार जाए है। जैसे खग देन प्रात चोग चोग आवे ओढ़ काहू देन फांसी फांस बाहरो न आए है।

चुप कर गया सी और वो ऋषि जान के पूजे आ गए और ऋषि जान के सत्कार आ गए। समाप्ति करा मैं साढ़े विच जना खड़ा खड़ा हो जाता है नहीं जी है गुरु गोबिंद सिंह की रचना नहीं रचना नहीं रचना नहीं। मैं अर्ज करा गुरु गोबिंद सिंह की रचना तो चंगे चंगे सियाने प्रेरणा लेंदे पैने कुछ सीखते पैने कुछ सीखने की कोशिश करो उन्हां दी रचना तो ठीक है। पुराना इतिहास सतगुरु ने लिखे है इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं किया छवी अवतारा की कथा है और सतगुरु साफ लिखते पैने दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए अवर वासना नाए प्रभ धरन जुद कह चाहे। मैं ये सिर्फ टीका कीता है मेरे अपने विचार नहीं है गुरु गोबिंद सिंह मैं भाषा की तो गल खत्म हो गई। इल्जाम ते गुरु गोबिंद सिंह ते उंज नहीं आउंदा पर कीता की जाए अकल नू ताले ला दो ते गुरु गोबिंद सिंह दी हर दिन नू खंडन करी जाए। दुआदार बोली जाओ जिन्हां नू कख नहीं पता सारी जिंदगी किसी होर पासे रोलदे ने बुढ़ेपे जो है कौम नू भ्रष्ट करन वास्ते गलत बोलनियां बोलन शुरू कर देंदे ने ते लिखना शुरू कर देंदे ने जिहदे नाल आम समाज गलत फहमी च पै जांदा। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा शांति निकेतन दे उस शब्द तो कविता बनाउण दी शैली नवी शैली कहिंदे जी इस नू जन्म गुरु गोबिंद सिंह ने दिता असी सीखदे आं असी सीखण दी जो है कोशिश पै करदे आं असी जाणन दी जो है कोशिश पै करदे आं। खैर लमकावा ना धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने शब्द ओहंकार जैसे ओहंकार दी धुन होई अनंत सूरज प्रगट होए एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े और ओ धुंध पानी बन गए सहजे सहजे ए अग दा गोला ठंडा होया इदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया ओ पत्थर दे रूप दे प्रगट होया आकार रूप दे पहला सी पत्थर और सारी दुनिया च जितना पत्थर पूजिया जांदा इतना परमात्मा नहीं पूजिया जांदा। पता है क्यों जैन पत्थर पूजदे ने बौद्ध पत्थर पूजदे ने सनातन पत्थर पूजदा ईसाई पत्थर पूजदे ने भावे मुसलमान आखन असी पत्थर दे पुजारी नहीं संगे असवत जो थे पिया खाना खुदा दे जद्दा दे कहिंदे ने इब्राहिम तो आया सीधा जन्नत तो आया इब्राहिम नू प्राप्त होया सीधा खुदा तो आया ए पत्थर। हुण इन्हां कोल कोई पुछे खुदा तो बिना भी किसी होर पासे भी कोई चीज आउंदी है सब कुछ खुदा तो है पत्थर भी खुदा तो है। जद ईसाई कहिंदे ने ए हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है तो बाकी शैतान दी औलाद ने जो खुदा दा बेटा है उन्हां नू इंज कहना चाहिदा है हजरत ईसा खुदा दा लायक बेटा है शरीफ बेटा है नेक बेटा है कोई हर्ज नहीं इस नू मनण दे नेक पुत्र है चंगा पुत्र है नहीं जी इकलौता पुत्र है बाकी कितों आए ने फिर सारे उसे तो आए सब उसे तो आए कहण दा ढंग ईसाइयां नू जो है नहीं आया गुस्ताखी जो है माफ जितना पत्थर पूजिया जा रहा है क्यों आकार रूप दे परमात्मा जब प्रगट होया है संसार दे पहले पत्थर दे रूप हुण पत्थर ते परमात्मा दा सुभाव इको ही है परमात्मा नू भुख प्यास नहीं लगती पत्थर नू भी नहीं लगती परमात्मा नू दुख सुख नहीं व्यापदा पत्थर नू भी नहीं व्यापदा परमात्मा नू हजारां गालां कटो क्रोधी नहीं आउंदा ते सारा दिन सजदा करी जाओ उपमा करो करी जाओ कोई फुल नहीं जांदा जे सब मिलके आखण पाए वड़ा ना होवे घाट ना जाए सारा दिन पत्थर देखो मथा रगड़ो वो कोई फुल नहीं जांदा ते सारा दिन उस गालां कटो वो कोई ढेरी ढा नहीं बैठदा पत्थर दा स्वभाव परमात्मा वास्ते परमात्मा वर्गा है फर्क सिर्फ इतना है पत्थर टोटली सुत्ता होया है परमात्मा पूरा जाग गया है पूर्ण तौर ते चेतन है। हुण पत्थर जिस दिन पूरा जाग जाएगा ये परमात्मा हो जाएगा सहजे सहजे प्रकृति प्रकृति दे भी अर्थ किधरे नेचर ना समझ लेना कुदरत आम कुदरत करदे ने संस्कृत दा शब्द है प्रकृत प्रकृति कृत तो पहले परमात्मा इथे प्रकृति दे अर्थ परमात्मा बनता है नेचर नहीं बनता कुदरत नहीं बनता कुदरत ते कृत है कादर दी कृत है पर प्राकृत

0: कृत तो पैठ है, वो तो परमात्मा है, वो तो करता है, पर कृति उसका नहीं। हम सहजे सहजे पत्थर नो मिट्टी बना, जिस शकल दे प्रगट कीता बनस्पति, ए दूजा पड़ाव से पत्थर ही बनस्पति बने। बनस्पति नु थोड़ी जिया प्यास लगती है, पानी चाहिए, क्यों जागी है। पत्थर ते टोटली सुता होया सी, जागे दियां लोड़ां आउंदियां, सुते दियां लोड़ां नहीं आउंदियां। बनस्पति दी लोड़ पानी चाहिए, प्यास पैदा हो गई है। हजारा लखा साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शकल दे प्रगट होई, वो है पशु ते पक्षी। हुण निरे प्यास नहीं, भुख भी लगती है। निरे पानी नाल शेर नु नहीं जवाया जा सकदा, मांस भी चाहिए। निरा पानी नाल गऊ नु नहीं जवाया जा सकदा, घास भी चाहिए। प्यास भी लगती है, भुख भी, आवाज भी आ गई, पशुआं कोल आवाज भी आ गई। लखा साल दी लंबी यात्रा तो बाद मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हैं। ए पशु जिस शकल ने प्रगट होए ने, इनू कहंदे ने मनुख। इहदा मन पशु नालों ज्यादा विकसित हो गया है, बनस्पति नालों ज्यादा जागया है। इहदियां लोड़ां भी ज्यादा ने, जागया जो ज्यादा है। पशु नालों इहदियां लोड़ां ज्यादा ने। पशु दी समाजिक जिंदगी नहीं है, पशु दी राजनीतिक जिंदगी नहीं है, पशु दी धार्मिक जिंदगी नहीं है, मनुख दी है। ज्यादा जागे, ज्यादा जागे, इदियां समस्यावां भी ज्यादा ने। और इंज कह दईए, सारे पशु सुखी ने, दुख दे केवल मनुख जी रहे, क्योंकि ज्यादा जागे। इनू असलियत दा थोड़ा बहुत ज्यादा पता चल गया। पर जिवें बनस्पति ते पत्थर रस्ते दे च ने, पशु भी रस्ते दे च ने, मनुख भी अजे रस्ते दे च है। मनुख दा परमात्मा होना बाकी है। भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। असी सारे दे सारे पड़ाव दे चां, जितने चिर तक गोबिंद नहीं हो गए रस्ते च ही हैं। गोबिंद किवें होई गए, प्रभु किवें होई गए। मैं अपने वक्ताओं नूं इत्थे समाप्त करना, क्योंकि मैं 10 मिनट ज्यादा लै गया, ते होर समय दी मैं उलंघना नहीं करनी। थोड़े नेड़े दूजे गुरुद्वारा साहब दे 118 मैं 2 दिन हाजरी भरनी है, 29-30 उदों मैं खोलण दी कोशिश करांगा। प्रकृति ने पत्थर नूं बनस्पति बनाया, प्रकृति ने बनस्पति नूं पशु पक्षी बनाया, प्रकृति ने पशु पक्षी नूं मनुख बनाया। हुण प्रकृति मनुख नूं परमात्मा नहीं बनाएगी, मनुख स्वयं कोशिश करे। अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है, मनुख नु स्वतंत्र छोड़ देता है। प्रकृति ने मनुख नु स्वतंत्र कर देता है, कर्म लई स्वतंत्र। तुसी आखो नहीं ए भी बजे होया, फिर सत्संग करन दी लोड़ ही नहीं, कथा कीर्तन दी लोड़ ही नहीं, स्वतंत्र है। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। उदा ते खाना पीना भी बजे होया, मनुख दा खाना पीना बजे होया ने। हजारां तरह दे पकवानां दा जन्म दाता है। सिर्फ भारत विच हजारां तरह दे खाने ने। बंगालियां दा खाना होर, गुजरातियां दा होर, तमिलनाडु महाराष्ट्र लोगां दा खाना होर, पंजाबियां दा होर, कश्मीरियां दा होर। चाइनीज फूड अलग है, यूरोपियन अलग है, दुनिया विच हजारां तरह दे खाने, क्यों मनुख स्वतंत्र है।
1: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।
2: सुनदे हो जी?
3: हां जी।
2: दसो जी की पकाइए?
3: अपने गवांड वाले फुटी के न जाइए, आलू जी दे वधिया, बैंगन अनमोल ने, गोभी उत्थे ताजी, करेले दे माहौल ने, मैंगो उत्थे प्यारे ने, ऑरेंज नेयारे ने, फुटी के न थां थां फार्म दे अपने, सब्जी फल इन्ने ताजे जिन्ने साडे सपने।
2: घट प्राइस ते जी सब्जी फल खाना है, फुटी के न जाना है, फुटी के न जाना है,
4: फुटी के न ही जाना। पंजाब फॉरेक्स, गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

जपो त एको नामा अवर निराफल कामा अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम ए रब्बी दौलत ए रब्बी सवात धन गुरु नानक देव जी महाराज सारियां दी झोली च पावे सारियां दी झोलियां भरन सारियां दी जिंदगी सफल होवे सारियां दा और इत्थों दे मुखी सजणां दा सारियां दा बार बार हार्दिक तौर ते धन्यवाद बोल चुक दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।